0: मैच नहीं बीट करके देंगे 2915 अर्जेंटिया रोड मिसिसागा ड्रीम होम अप्लायंसेस 905-805-3000 905-805-3000 रेडियो उड़ान का रेफरेंस देने ते खूबसूरत गिफ्ट भी पाओ
1: Rushmeet Kaur at 647-539-4499.
0: Fashion IQ program this is sinus sponsor karne Fashion IQ premium clothing brand Fashion IQ te tusi heavy blanket rajai wale blanket buy one second 25% off five bed sheet only $50 te men's section de vich men suit de upar tusi buy one second 25% off lady section de vich lady suit 25 to leke 50% flat off de upar tusi le sakde ho lady section de vich kuch vi aur naal di naal

सतगुरु होई दयाल तसरदा पूरी है, सतगुरु होई दयाल न कबहूं झूरी है, सतगुरु होई दयाल त दुख ना जानी है, सतगुरु होई दयाल त हर रंग माणी है। अकाल पुरख दे दिते होए सारे रंगां नूं मानदे होए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: कमाल दा कैसी यार, यकीन ही नहीं होता।
1: तीनों इधर तो यकीन नहीं होता। तू ए सुन, सेव ऑन एनर्जी वाले फ्री इलेक्ट्रिक हीट पंप ते रहने जे तुहाडे घर विच इलेक्ट्रिक जे ऑयल हीटिंग है।
0: इस गल ते मैनू पूरा यकीन है, ओ ते इंस्टॉलेशन दा 100% खर्चा भी आप देंदे ने, ते जे तुहाडे घर विच ऑयल हीटिंग है ते ओ ऑयल टैंक वी फ्री च बाहर कर देंगे, नाले हीट पंप तुहाडे हीटिंग बिल्स 50% तक घटा सकदे ने।
1: ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ?
0: ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ।
1: ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ?
0: saveonenergy.ca/eap।
2: This is AM 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला

0: शादी दी मूवी बनवान ले या रिंग सेरेमनी ले वेडिंग एनिवर्सरी जागो प्री वेडिंग बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट कर ले याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नो 416-930-1251 416-930-1251
1: चंगा ट्रक ते वधिया जॉब लैण लई कित्थे जावां
2: तां फिर तू क्वालिटी लॉजिस्टिक क्वालिटी ट्रक सेल वालियां कोल जा 12 महीने कम पाओ ते नाले चंगे डॉलर कमाओ
0: क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक जिन्हां नूं पाल है काबिल ते ईमानदार ट्रक ड्राइवर्स ट्राला ड्राइवर्स ते ओनर ऑपरेटर्स दी वधेरे जानकारी लई क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक दे जसवीर होरां नूं कॉल करो
2: 416-717-2929
0: 416-717-2929 क्वालिटी लॉजिस्टिक इंक 14 स्टेनवे बुलेवर्ड यूनिट 4 इटोबिको
3: लेडीज एंड जेंटलमैन You are not ready for this.
4: पर हुन थोनू कार लैन ले रेडी करनगे मॉर्गेज द किंग गिरीश शर्मा

0: और किस्ती पड़ी कल कल
1: होए शम्मी पठल होराना हो गई गल कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट ले याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल तुहाडीआं लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशंस ते बेस्ट प्राइस ते कर आसानी नाल लेके दिंदे ने रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल आज ही कॉल करो 416 917 7763 416 917

0: क्या बात है, बड़ा प्यारा गीत यार। 6640 हेलो,
1: सत श्रीकाल जी। राती तुहाडे फादर साहिब दर्शन करन दा मौका मिलिया, बहुत चंगा लगा।
0: ओ क्या बात है, केड़ी जगह?
1: इश्क ते अग दोने एक बराबर, पर सानू इश्क दा शेक बथेरा। अग ता साड़े कख ते काने, इश्क साड़िया तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, दसो इश्क दा दारू केड़ा। बुलिया उत्थे कुछ नहीं वजदा, जिथे लग्या लाया इश्क ने डेरा।
0: क्या बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर, थैंक यू सो मच। खुश रहो, जिंदे रहो। मास्टर सलीम आ रहे हैं थोड़े शहर, 24 तरीक नूं लाइव परफॉर्म कर रहे हैं मिसी सागर कन्वेंशन सेंटर विखे। टिकटां चाहिए, टिकटां लई 6477839873 मास्टर सलीम दे शो दीयां टिकटां लै लो, जल्दी जल्दी लै लो, चंगे रहोगे, इंजॉय करोगे, बहुत प्यारी शाम होगी। मास्टर सलीम लाइव विन कॉन्सर्ट। क्वालिटी कार रिपेयर नूं याद रखो, उबर या लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है, गड्डी की इंजन ट्रांसमिशन का कोई काम है, क्वालिटी कार रिपेयर दे मिस्टर कुलवंत भाजी। 905-460-1111 नंबर है, 905-460-1111 क्वालिटी कार रिपेयर। हरमन बत्ता, साडे मॉर्गेज एक्सपर्ट टीम हरमन बत्ता। हरमन का नंबर है 647-685-9000। इन्हों तो वधिया सर्विस नहीं कितों मिलनी, इन्हों तो वधिया रेट नहीं कितों मिलना। घूम के सारी दुनिया देख लो, मैं खुद आप फाइल हरमन तो कराई है। टीम हरमन बत्ता 647-685-9000 6476859000 0941। हाँ जी, जॉब चाहिए बी, टेंटा का काम है, सीधी जी गल है, पैसे कमाने तो कॉल करो, हर एक बंदा एक काम कर सकता, बस मेहनत करनी पैनी है। 416-557-0941 थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। 416-557-0941 अंकल बहुत प्यारे इंसान ने, इन्होंने कॉल करो, तो मैं जानता अंकल नू, मेरी हुण किन्नी उम्र होगी, मैं लगता कि घट्टो घट 27-28 साल तो, सो कॉल कर लो जरूर, एंड जॉब थोनों मिल जाएगी। सो ओके, कोई भी जो नंबर चाहिए साढ़े किसी भी बिजनेस के, पंजाबी दरां का इंस्टाग्राम पेज है पंजाबी दरां, वह तो लै लो। हाँ, तुम एक मैंडी नू कॉल करो, गड्डियां घर की इंश्योरेंस करवानी है, $500-700 बचा ना इंश्योरेंस के रेट से, तो मैंडी गिल, मैंडी का नंबर है 647-929-9509 मैंडी गिल 6479-299-9509। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 647।
2: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਸਪੇਸ, ਕੰਫਰਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਟਮਰਿਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਈਟਸ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਤੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੂਵ ਇਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਟੂਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 780-239-5845 780-239-5845।
3: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
4: 530. Radio Awaaz, har roz, savere 9 to 10 baje tak, Radio Awaaz.
5: All advertisements are paid. Awaaz the Voice does not take any responsibility for any paid advertisements during this program.

खास खूबसूरत खूबसूरत लोग खूबसूरत मिलकर सी एच एल ओ डिजिटल ए एम फ्रीक्वेंसी रहे टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशखबार चढ़ती कला वाला निरपो निर्वैर रहेगा, रोशनी रस्ते दिखावेगी, रस्ते देते तुम चलते जाओगे तो मुस्कुराहट चेहरे का हिस्सा रहेगी। एक बार फिर तो पियर्सन एयरपोर्ट का ट्रैक 6 जिथे अमदीप सिंह बैनीपाल थोड़ा मकाते पाया ग्रीनरी के नाल धुप पर हल्की हल्की ठंडक अज के दिन महसूस

0: गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, वेलकम टू डेव ट्रावला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी हैं, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा अज का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी कि अगले दो घंटे विच तुहाडे लई नेशनल इंटरनेशनल खबरां पेश कीतियां जाण। वतन दूर पेश कीता जाएगा किरण जी और सुखी नजर भाई वालों। और सब तो पहला छतरी छात्र रिपोर्ट हाजिर है। अज सूरज सिंह 5:45 ते आया, 8:59 ते चले जाना। मामा चांस सवेरे सवेरे 1:33 ते आएगा, कहना अज सारा दिन रहांगा ते शाम नूं 5:37 ते जाना। तेरी मर्जी भाई। अज मिक्सड सन एंड क्लाउड 29 डिग्री, कल मिक्सड सन एंड क्लाउड 28 डिग्री, संडे नूं सारा दिन सूरज चमकेगा 30 डिग्री, मंडे नूं मिक्सड सन एंड क्लाउड चखड़ झोले थंडरस्टॉर्म सब कुछ होगा, तापमान 31 डिग्री। और ट्यूजडे 32 डिग्री तापमान होगा, बट इट्स गोना फील लाइक 41 डिग्री मिक्सड सन एंड क्लाउड। और बुधवार 34 डिग्री तापमान रहेंगे।
1: इंग्लैंड तो 2 मैच, आयरलैंड तो लगातार हारे ने, सो 5 मैच लगातार T20 दे विच हार गए ने।
0: ले ए कोई गल हुई, ए आ कम तो ब्लू जे वाले करी जांदे आ।
1: बस आप भी ब्लू जेस वाले ही है जी, नीले कपड़े इन्हां दे पाए आ।
0: अच्छा कल फ्रांस मोराको दा मैच होया, लेकिन जेड़ा मेन प्लेयर है वो तो पेनल्टी शॉट मिस हो गया।
1: बिल्कुल सर, मबापे ने पेनल्टी किक बड़ी माड़ी जी मारी सी और गोली ने वो रोकती, बट हैविंग सेड सो उसके बावजूद भी फ्रांस ने पूरा मैच जरा जी डोमीनेट किया, 2-0 दे नाल जेतू रहे ने। ते उस तो बाद जरा उन्होंने गोल किया वो बड़ा काबले तारीफ है और देखने वाला सीगा। ते फिर आइसिंग ऑन द केक वाज डेम्बेलेस केक, 2-0 दे नाल पिछली बारी भी सैमीफाइनल मोरक्को तो जेतू रहे थे, इस बारी क्वार्टर फाइनल फ्रांस जरा जी 2-0 नाल जेतू रहे।
0: ते अज की दा मैच है भाई?
1: अज स्पेन वर्सिज बेलजियम है जी, 3 बजे मुकाबला और चंगा मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि बेलजियम ने जिस तरीके लास्ट गेम यूएसए के अगेंस्ट खेडी सी उस तो पहला तो बहुत वधिया नहीं खेडे, और स्पेन भी रिदम दे विच नहीं देखिया सी जदों वर्ल्ड कप शुरू होया सी, बट नाउ बोथ टीम्स आर इन रिदम ते देखदे हां जी अज फिर किहड़ी टीम बाजी मारदी है।
0: हुण सिर्फ एक एक मैच ही होया करेगा, किसी दिन 2 भी होणगे।
1: कल नू 2 ने जी, नॉर्वे वर्सिज इंग्लैंड शाम नू 5 बजे, ते फिर लास्ट क्वार्टर फाइनल अर्जेंटीना वर्सिज स्विट्जरलैंड रात नू जड़ा जी 9 बजे होना। एक टीम जड़ी है सेमीफाइनल च पहुंच चुकी है विच इज फ्रांस, ते अज जड़ी टीम स्पेन ते बेलजियम तो जितेगी वो फ्रांस दे नाल सेमीफाइनल च भिड़ेगी।
0: उधर क्वाई लैनर्ड कहंदे जी आ गया मुड़ के, आ गया जी मुड़ के आ गया, हुण कहंदे ठहरो ठहरो भैया होल्ड करो, ना ना मित्रा इन्नी जल्दी नहीं, उहनू की हो गया हुण?
1: भाई जी उत्थे जड़े एले क्लिपर्स ने उन्होंने बिहाइंड द सीन जड़ी है जी वह डील की आ, अपनी थोनों पता इस दे विच सैलरी कैप हुंदा, सो सैलरी कैप नूं उत्ते थले करन वास्ते उन्होंने एक थर्ड पार्टी नूं पैसे दिते, भाई तू क्वाई लैनर्ड नूं पैसे दे दिया करी ते शो इस तरह करना भी तेरी इस दे नाल डील होई हुई है एज अ एडवरटाइजर, ते उहदा जड़ा जी हुण रौला है ते ओह जिहड़ी है NBA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ते जिन्नी देर तक वो इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुंदी ते उन्नी देर तक क्वाई लैनर्ड साहब इत्थे नहीं आउंदे, ते इह भी नाल पक्का है कि जेकर इन्वेस्टिगेशन च कुछ फाइंड आउट हुंदा तां इत्थे तक की आउणा सस्पेंड भी कीते जा सकदे।
0: अज मैं एक बड़ा चंगा काम कीता जी, सवेरे सवेरे मैं आ रहा सी अपने सैंडलवुड ते टॉप रूम दे कोले, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाले जिहड़े साइन नहीं लाए हुंदे थां थां दे सिखाइयां दे विच जी, डक करा लो साफ, फलाना करा लो साफ, खंभे ते लिखिया हुंदा मॉर्गेज दिंदे आ दिंदे आ, ओह लाउण लगे सी पट्टण लगे सी, मैं गड्डी दे 4-way ला के खड़ के जा के हथ मला गया, मैं थैंक यू साइन गंद पाया इन्हां ने। अच्छा तुसीं तां हुण रियल स्टेट च काम

0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: saveonenergy.ca/eap.
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: बर्फंदे जी
1: बिल्कुल जी बिल्कुल देखो राजपाल साहब है जो आज पंजाब के गुलाम चंद कटारिया ने महत्वपूर्ण गल कही है वो कहने भी देखो अज मैं आया है उस समागम जेडे समागम इस वे बहुत वड्डी गिनती के अफसर बैठे है वो कहने जी इस समागम आए हुए लोगों अफसर पहले धन्यवाद करते हैं दूसरी गल कहने जी कि सानू वातावरण बचाने के लिए दरख्त लाने चाहिए है दरख्त है जेडे लाने के बारे अफसर कह दें जी कि असी इन्हें दरख्त लाते असी इन्हें दरख्त लाते अफसर मार दे गप्पा वो कहने भी जे सची मुची इन्हें दरख्त लगे हो जिन्ने से कहते हैं तो फिर तो भाई पंजाब के हर चार इंच के उत्ते एक दरख्त होना चाहिए जिहड़ा कि नहीं है सोना ने गल कही है कि दरख्त लाने के वल गौर करनी बनती है सिर्फ कागजा के दरख्त नहीं लाने चाहिए जी
0: सर ज्यादा ज्यादा कुछ होर ऐड करना चाहते हो जी
1: देखो पंजाब का मौसम अजी झकानिया गई जाता असल ना तो मीह पा बहुत वो पता नहीं बदलों को कलजी हुई पी है समझ नहीं वो बनया की पाया आज कहने बहुत मीह पै जाना पर उमें पा आ जरा हूँ अज भी गर्मी बहुत सी उदा मौसम विभाग ने गल कही है कि तीन चार दिन पंजाब के मीह पैना पर कहने जी पांच छह जिले पैना पूरे पंजाब के मीह पैना सो भारत के कई सूबे उत्तरी भारत के कई सूबे बहुत मीह पै गया पर पंजाब दे विच की मानसून पौना हले तक ठंडियां मठियां चल दियां जी
0: चैट जीपीटी नूं पुछ लेना सी ओ शायद 10 बजे कुछ करहीं
1: ओ मैं पता नहीं मैनूं पुछणा नहीं आउणा कोई कुछ गलत दस देणा जी
0: सो बहुत बहुत धन्यवाद टाणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया दीपांश भाई हुणी है दुआबा टूर एंड ट्रैवल तो 905-673-1400 गलबात कर सकते हो 905-673-1400 गलबात की जा सकती है सो एक गीत है जरा ये ग्रैंड फर्नीचर वाले की फरमाइश से है भाई ठीक है स्पैशली तौर पर सुखड़ा ने भेजा कहते भाई चक दियो करा
2: ला पंजाब पंजाब पानिया की धरती पंजाब एदा विरसा बहुत अमीर है ये धरती है फकीरां दी सूरबीरां दी ते आशकां दी इसे विरसे विच्चों बहुत प्रचलित लोक गाथा मिर्जा लैके हाजिर होए मैं सचिन आहूजा ते बुलंद आवाज दी मलिका गुरलेज़ अख्तर उम्मीद है

0: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
1: भाई कला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे, इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी। जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
2: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
1: 416-509-1509
2: और विजिट insuranceforyou.ca।
3: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।
4: टुडे विच लाइव गलबात कर ले, हुणे कॉल करो 905-564-6444।
3: 905-564-6444।
4: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो, चलो AM 530। तो
5: मैनु पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाली सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज? कित्थों आएगी इनकम? किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे? अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ। कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तो मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकते हो।

0: लाइफ इंश्योरेंस का लाइसेंस लेना बहुत सौखा है, पर सही सपोर्ट तो बिना काम करना बिल्कुल सौखा नहीं। इंश्योरेंस फील्ड दे विच हजारा लोग आंदे ने ते हजारा ही जांदे ने, पर सिर्फ प्रोफेशनल एडवाइजर्स ही टिके रहंदे ने।
1: जेकर तुसी एक लाइसेंस इंश्योरेंस एडवाइजर हो या फिर तुसी भी लाइसेंस लेके अपने क्लाइंट्स दे लई सही पॉलिसी ते प्रोफेशनल काम करना चाहुंदे हो, तां फिर अज ही टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू नाल संपर्क करो।
0: कॉल 416-457-3381 416-453-81।
1: टॉप फाइनेंशियल दा नवा ब्रैम्पटन ऑफिस एयरपोर्ट एंड क्वीन दे बिल्कुल नजदीक 70 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड यूनिट 11 ते लोकेटेड है, जिथे एडवाइजर्स लई बिना कोई फीस बिना कोई चार्जेस तो मॉडर्न ऑफिस अते फैसिलिटीज अब पूरा एक्सेस है।
0: टॉप फाइनेंशियल दे इंश्योरेंस एडवाइजर्स दे लई पहले ही दिन तो हाईएस्ट कमीशन पैकेज, डेली इन ऑफिस ते ऑनलाइन ट्रेनिंग ते हर एक मेजर इंश्योरेंस कंपनी दे नाल डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दा भी प्रबंध है।
1: हां, इंश्योरेंस एडवाइजर चाहे नवे हो या पुराने, चाहे एक्टिव हो या पार्ट टाइम, या फिर तुसी सब तो वधिया ब्रोकरेज दी भाल विच हो, अज ही संपर्क करो टॉप फाइनेंशियल दे सिमराज सिद्धू दे नाल 416-457-3381 416-457-3381।
2: दोस्तों, देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नू या चलो एएम 530 ते 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उहनां नू सुनण वास्ते जां देश प्रदेश नू लाइव वेखण वास्ते लॉग इन करो साडी वेबसाइट नू www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com। लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो, जे वाच करना चाहुंदे तो ओह ते क्लिक करो, जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सेक्शन क्लिक करो, ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नू क्लिक करो, ओहते तुसी सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7। सानू माण है कनेडियन होण दा, ते कनेडियन होण दे नाते सोफा मार्ट ते कैसा लेदर जिहड़े के इक्को ओनर ने और कस्टम मेड सोफे तैयार करदे ने कनेडियन मेड, अपने घर दे लिविंग रूम दी गिनती मिनती करके लेके जाओ ते हंसा सोफा तैयार करवाओ। 4 सीटा वाला 5 सीटा वाला तुहाडी अपनी मर्जी आ, 11x11 10x10 दा सोफा सेट तैयार करवा सकदे हो। इन्हां दी फैक्ट्री है 120 डेल्टा पार्क, उत्थे बहुत वड्डा शोरूम है ते पहला शोरूम है 24 रीगन रोड ब्रैम्पटन। नंबर है परमजीत कौर फोन दा 905-792-8053 905-792-8053। सोफा मार्ट और कैसा लेदर इको ही कंपनी दा नाम। दोस्तों, रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नाल जुड़े हो, SS लॉन केयर वालों का नंबर तुहानू दईए। नवा घा लवाना, पुराने की देखभाल करवानी है, दरख्त वगैरह तो लगे हुए ने लवाने ने, होर अज भी लवा सकते हो, लैंडस्केपिंग सारा काम किया जाता। इन्हें वैबसाइट देखो www.sslawncare.ca। समर के लॉन केयर का काम किया जाता, विंटर के जी घर की स्नो हटाई जाती है, जे जो प्लाजे वगैरह ने कमर्शियल उतों भी इंश्योरेंस हटा देंगे ने। नंबर है गुरप्रीत का 437-655-1984। कितने बार छुट्टिया छुट्टी जाना दो वीक वास्ते, घर पिछे घर पानी पुनी लगता मर जूगा पिछे, ये ला देंगे, इन्हों दे दौ ड्यूटी अपने आप पिछे वैक्चर खोल के, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਓ 437-655-1984।
3: ਜੀ 1000 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
4: ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਦਾ ਲਾਓ ਛੱਲਾ।
3: ਅਮਰਤਾ ਵਿਰਕ ਦਾ ਛੱਲਾ
4: ਗੀਤ
2: ਗਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਲ ਵਾਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ
3: ਨੇ।
2: ਲਓ ਜੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ, SS ਲੌਨ ਕੇਅਰ ਦਾ 437-655-1984। ਨੀਲ ਵਰਮਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਿਓ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
3: ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਨੰਬਰ 905-564-6444-905-564-4444 ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੋ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਮੂਵੀ

सारी रात जागे, अब अल्लाह जाने रमतिया क्या होगा आगे। ये सुन दे सारी यारानू आ गई तरेली, बई हौली हौली।